तो सोच भी नहीं सकती थी कि बिन माँ बाप के बच्चे मेरे मरे हुए माँ बाप का मजाक उड़ा सकते हैं। ये सब आप लोगों ने इसलिए किया ना कि मैं चली जाऊं। I'm going। आप जैसे लोगों के लिए नौकरी करने से तो अच्छा है मैं अनाथ आश्रम में उन बच्चों की देखभाल करूं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके खुद के दिल टूटे हुए हैं।

0: रूप है।
1: मैं भी उंगलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाए।